हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: अनुभव वो शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सीख देता है। जीवन की हर सफलता और हर ठोकर अपने साथ एक नया अनुभव लेकर आती है, जो हमें पहले से अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव उस ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाता है। इसलिए हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। अनुभव उम्र से नहीं, सीखने की इच्छा से बढ़ता है।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

इस मात्र वंदना को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर की आवाज में ये भजन, रचना मीराबाई की है।

0: आलोक गांगुली के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों,

आइए आज हम कुछ बातें करें दालचीनी के संदर्भ में। मसाले वाली फसलों में दालचीनी का एक अहम स्थान है। हमारे इन द्वीपों की जलवायु दालचीनी की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ पर किसान भाई इसकी खेती करते भी हैं। दालचीनी की प्रमुख रूप से दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली प्रजाति चाइनीज व दूसरी श्रीलंका से संबंधित है। चाइनीज प्रजातियों को हमारे इन द्वीपों में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि ये प्रजातियां मुख्य रूप से शीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु में उगाई जाती है, लेकिन श्रीलंका प्रजातियों को हमारे इन द्वीपों में आसानी से उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, दालचीनी की खेती सीधे बीजों द्वारा की जाती है। बीजों को पहले नर्सरी में रोप कर पौध तैयार करते हैं और इसके बाद इन पौधों की रोपाई मुख्य खेत में की जाती है। बीजों को पेड़ से जुलाई अगस्त में इकट्ठा किया जा सकता है। पौधों को छाया में बालू की नर्सरी में तैयार किया जाता है। दालचीनी के बीजों का अंकुरण करीब 10 दिन में आरंभ हो जाता है और जब पौधा करीब 2 से 3 पत्ती का हो जाए

0: में रोपकर पौध तैयार करते हैं और इसके बाद इन पौधों की रोपाई मुख्य खेत में की जाती है। बीजों को पेड़ से जुलाई अगस्त में इकट्ठा किया जा सकता है। पौधों को छाया में बालू की नर्सरी में तैयार किया जाता है। दालचीनी के बीजों का अंकुरण करीब 10 दिन में आरंभ हो जाता है और जब पौधा करीब 2 से 3 पत्ती का हो जाए तो उसे पॉलीथीन के थैले में, जिसमें की सड़ी हुई पत्ती की खाद एवं बालू मिली रहती है, रोप देते हैं। पूर्ण रूप से तैयार दालचीनी के पौधे हम विभिन्न संस्थाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। दालचीनी के पौधों की रोपाई मानसून के शुरू होने पर की जाती है। रोपाई के पूर्व 2-2 मीटर की दूरी पर 60 घन सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा बना लेते हैं। इन गड्ढों में मिट्टी तथा सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर भर देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों को इन्हीं गड्ढों में लगा दिया जाता है। दालचीनी के पौधे लगाने के बाद उन्हें अच्छी तरह से मिट्टी द्वारा दबा देते हैं और मिट्टी को थोड़ा ऊंचा रखते हैं, जिससे कि बारिश के दिनों में पौधे की जड़ के आसपास पानी ना इकट्ठा होने पाए। अधिक पानी होने से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। किसान भाइयों, श्रीलंकाई प्रजाति से खेती करते समय एक ही गड्ढे में करीब करीब 15 पौधों को एक साथ लगाते हैं, जिससे कि प्रत्येक गड्ढे से अधिक शाखाएं प्राप्त हो सके। गर्मी के दिनों में 1 सप्ताह के अंतराल पर पौधों की सिंचाई करनी चाहिए तथा उनको कृत्रिम ढंग से छाया प्रदान की जानी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग पौधे के पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने के बाद ही करना चाहिए। उर्वरक की सही सही मात्रा का पता लगाने के लिए आप अपने बागान के खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। वैसे औसतन हमारे इन द्वीपों में पहले वर्ष में जब पौधा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए तो 40 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 40 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के दर से देना चाहिए। दूसरे वर्ष प्रथम वर्ष दी गई यूरिया की मात्रा को दुगुना कर दें तथा तीसरे वर्ष 3 गुना यूरिया दें। इसके साथ ही पौधों को 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक भी दें। इसके अलावा प्रत्येक पेड़ को 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद भी देना चाहिए। जब पेड़ लगभग 3 से 6 वर्ष पुराना हो जाए तो करीब 6 इंच जमीन से ऊंचाई पर पेड़ को चाप कर देते हैं। ऐसा करने से शाखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 1 से 1.5 वर्ष बाद जब शाखाएं अंगूठे की मोटाई की हो जाए तो उनको आधार से काट लेते हैं। शाखा से छाल छुड़ाने के लिए चाकू से छाल की ऊपरी सतह को खुरच लेते हैं। उसके बाद सफेद सतह मिलती है, जिसको छुड़ाने के लिए लकड़ी के डंडे या लोहे की छड़ से धीरे धीरे पीटते हैं। इस प्रकार छाल शाखा से अलग होने लगती है। अंत में चाकू की नोक से पूरे छाल को लंबाई में चीर देते हैं और नोक लगाकर छाल को तने से अलग कर लेते हैं। फिर छाल को सूर्य की धूप में सुखा लिया जाता है। इस तरह से दालचीनी प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में

0: According to sources, the agency interrogated yesterday Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face to face at Bhavani Bhavan. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज यानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा आज दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल मंगलवार 16 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नैनकोरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर सिंधु जलयान कल मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान बृहस्पतिवार 18 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमल बे से नैनकोरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 16 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल मंगलवार 16 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 16 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही शाम 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल 16 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 16 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन बुधवार 17 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज बातें पेड़ की। दोस्तों, एक बीज मिट्टी में सोया था, बारिश ने उसे जगाया, सूरज ने उसे सहलाया और समय ने उसे पेड़ बना दिया। फिर उसी पेड़ ने फूल दिए, फूलों ने खुशबू दी और फलों ने जीवन को मिठास दी। यही कहानी, यही आश्चर्य और यही प्रकृति का जादू इस गीत में सुनाई देता है।

दोस्तों, अकेलापन तब तक ही है जब तक नज़र सिर्फ खुद तक सीमित है। जैसे ही नज़रें फैलती है, हर तरफ जीवन दिखाई देता है। पेड़ों में अपनापन है, फूलों में मुस्कान है, पंछियों में उम्मीद है, और ये सब मिलकर मानो कह रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है।

0: दोस्तों, पेड़ चाहे इमली का हो या बेरी का, उसकी पहचान उसके फल से होती है। इमली खट्टी होती है तो बेर मीठे होते हैं। दोनों का स्वाद अलग है, लेकिन दोनों प्रकृति की अनमोल देन है। इसी तरह इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, किसी के विचार अलग है, किसी का स्वभाव अलग है, किसी की पसंद अलग है, लेकिन यही विविधता दुनिया को सुंदर बनाती है।
1: हे राजू चल बिरू, हे राजू

0: श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम का ये सफर शबाना के साथ आज बस इतना ही। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी शबाना। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे की 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की 270वीं कड़ी।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: अभी आप रामचरित मानस गान की 270वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक जनादेश से ऐतिहासिक कृतिमान तक पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे करते हुए उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया और उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने कांग्रेस से निराश होकर एनडीए पर भरोसा जताया था और पिछले 12 वर्षों में उस विश्वास को और मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2014 में जिस आशा का उदय हुआ था वह आज राष्ट्रीय आत्मविश्वास में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नेशन फर्स्ट की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि उनके लिए दल से बड़ा हमेशा देश रहा है। भारत को केवल दुनिया की बराबरी नहीं करनी है बल्कि उसे एक कदम आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। शासन की नीतियों के कारण पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा, जो लोग पहले निर्धन थे वे अब नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बन रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी प्रगति का सिलसिला जारी रहे। आयुष्मान भारत, GST, वस्तु एवं सेवा कर, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और आयकर राहत जैसे कदमों का लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं बल्कि देश के जन जन का संकल्प बन चुका है। प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड कार्यकाल पर विश्व के अनेक नेताओं ने उन्हें बधाई दी, इसे भारतीय लोकतंत्र में जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने राष्ट्रीय बहस को प्रभावित किया। इनमें डिजिटल इंडिया अभियान, वस्तु एवं सेवा कर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, 3 तलाक कानून, अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, COVID-19 टीकाकरण अभियान, नए संसद भवन का उद्घाटन, G20 सम्मेलन की मेजबानी, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं प्रमुख रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पर एनडीए नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वैश्विक संकटों के बीच भारत को स्थिर नेतृत्व मिलने की बात कही, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेदाग और ऐतिहासिक बताया। भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, डेटा सेंटर, जहाज निर्माण और नागरिक विमान निर्माण जैसे क्षेत्रों को भविष्य की प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार रहेगा बल्कि तकनीक, विनिर्माण, पर्यटन और खेलों के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4,399 दिनों का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है। यह रिकॉर्ड केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा का पड़ाव नहीं बल्कि पिछले एक दशक से अधिक

0: समय में देश की राजनीति, शासन व्यवस्था, विकास मॉडल और जनादेश की बदलती दिशा का भी प्रतीक है। इन 12 वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक कूटनीति और अनेक नीतिगत सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। इसके साथ ही सरकार की नीतियों और निर्णयों को लेकर तीखी राजनीतिक बहस भी जारी रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक विशेषता है। ऐसे में यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड भर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक युग का दस्तावेज है जिसने भारत की समकालीन राजनीति, विकास की अवधारणा और वैश्विक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। आने वाले वर्षों में इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौर का मूल्यांकन उनके वादों, उपलब्धियों और चुनौतियों तीनों के आधार पर करेगा।
1: अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकतांत्रिक जनादेश से ऐतिहासिक कृतिमान तक पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए अब सुनिए ये देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 17 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आरती अंकलेकर टिकेकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1306 कड़ी प्रसारित की जाएगी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर अनुराधा पौडवाल के गाए चंद गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप गाना लहरी कार्यक्रम सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। दोपहर 1:10 पर समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा आओ हिल मिल गाएं। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाती रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप कुछ विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे। हरिहरन को आप सुन पाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बाहरों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम होगा, जिसमें विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंसेंसिनेशन इन कैटल, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुजाता। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा कपूर से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन से आमदनी। पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 6:30 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम वजन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान। और फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं रात 10:00, जबकि आप रात 9:30 पर विविध भारती मुंबई से सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:55 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज सवेरे 7:15 पर आप देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन पाएंगे देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नई दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा संसद 2026 में भाग ले रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। युवा मामले और खेल मंत्रालय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आज से नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। माई भारत द्वारा 17 जून तक आयोजित इस कार्यक्रम का विषय नारी शक्ति वंदन समावेशिता और विकसित भारत 2047 को प्रेरित करना है। ये कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें जिला नोडल के तहत 797 नोडल विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर विचार विमर्श किया गया। दूसरे चरण में राज्य दौर में सभी राज्यों की विधानसभाओं और प्रमुख सरकारी स्थलों का दौरा कर युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 युवा शक्ति संचालित बजट पर जानकारी दी गई। राष्ट्रीय दौर के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि इस समापन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। इस आयोजन में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की छात्राएं दिशा सिंह और आर संजना को द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। युवा प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए 17 जून को विकसित भारत युवा संसद 2026 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन कल संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने का परामर्श दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए डॉ. B.R. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित MSBT के तहत विभिन्न डिप्लोमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान के तहत डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में लैटरल एंट्री के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में भी डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 20 जून तक सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत में हाल ही में नशा मुक्त अभियान के तहत विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम जनता को निःशुल्क मनोरोग और मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं। इसी कड़ी में रंगत में जागरूकता वार्ता, योग और ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सहायक आयुक्त दीपांशु वोरा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जनता विशेषकर युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित रूप से योग करने और तंबाकू, शराब, ड्रग्स व अन्य हानिकारक व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 19 जून को शाम 5 बजे आपदा प्रबंधन भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक देशव्यापी आयोजन का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन से करेंगे। इस केंद्रीय कार्यक्रम की कार्यवाही का स्थानीय कार्यक्रम के दौरान सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ वितरित किए जाएंगे। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ योजना के उद्देश्यों और इसके

लाभों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विभाग ने नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों, व्यापारिक निकायों, कर्मचारियों और लाभार्थियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग तथा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र में लगभग 55 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना और सीपीसीबी पोर्टल पर भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले की पहचान, मैपिंग, जियो टैगिंग और पंजीकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम में अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अनुसार नियम 6 के तहत प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। शहरी स्थानीय निकायों को सर्वेक्षणों के माध्यम से बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने, इन चिन्हित कचरा उत्पादकों को जियो टैगिंग करने और हर साल 1 अप्रैल तक पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टल swmcpcb.gov.in पर पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण फाउंडेशन और अंडमान निकोबार पर्यावरण टीम ने वंडोर ग्राम पंचायत और स्थानीय युवाओं के सहयोग से कल मिक्स्ड जेंडर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में अंडर 12 और अंडर 19 श्रेणियों में लगभग 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा मुख्य अतिथि थे। अंडर 19 श्रेणी में साई की सारा एक्का लकड़ा को टॉप स्कोरर और कृष्णेंदु दास को बेस्ट प्लेयर चुना गया। टूर्नामेंट में टाइटन FC ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि ब्लू लॉक FC उप विजेता टीम रही। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत ऑनलाइन योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों द्वारा किए गए योग के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने आज वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्री सुविधा दिवस मनाने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने अंडमान निकोबार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों में कुछ समय के लिए रुकावट को लेकर परामर्श जारी करने के समाचार को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने शहीद द्वीप में हेल्थ फॉर यू द्वारा बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के समाचार को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नई दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा संसद 2026 में भाग ले रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हर भारतवासी को अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान और निष्ठा से भर देती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है जो अपनी राष्ट्र की मिट्टी, संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को जोड़ती है।

श्रोताओं, भारत एक ऐसा देश है जिसे लोग सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इसे माँ मानते हैं और हम सब इसे प्यार से भारत माता कहते हैं। यहाँ की गंगा नदी की साफ और पवित्र धाराएं, हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे खेत और गर्म रेगिस्तान, ये सब मिलकर भारत माँ के रूप बनते हैं। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

है, उलझने चाहे कितनी भी हो समझदारी से ही सुलझती है। उम्मीद मन में कायम रहे तो बंद राहें भी खुलती है, वक्त चाहे जितना इम्तिहान ले सब्र से ही मंजिलें मिलती है। जी हाँ श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

श्रोताओं, आज के इस दिन को हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दिन बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, झुरियों में छुपी है तजुर्बे की कहानी, उनकी आंखों में बसी है दुनिया की निशानी। झुकता नहीं हौसला उम्र के साए में, झुकता नहीं हौसला उम्र के साए में, बुजुर्गों से ही मिलती है जिंदगी की रवानी।

अभी आप मुकेश और साथियों को सुन रहे थे। फिल्म का नाम था धर्म करम। और अब आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में हंगामा फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं, वधुन बनाई हैं नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जांच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
7: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
8: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
10: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अफलातून, इस फिल्म का ये गीत। और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

अपेश है इब्राहिम अश्क का लिखा एवं राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

और अब अंत में सुनिए इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में तैयार तेरा जादू चल गया। इस फिल्म का ये गीत बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, समय कभी एक सा नहीं रहता, वक्त सबका बदलता है। चाहे कितने घनघोर हो रात, सूरज हर सुबह निकलता है। धैर्य रखो और बढ़ते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। जो हार ना माने मुश्किल में, उसका सपना हकीकत बनता है। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: www.govin. हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
2: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवी यात्रा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
3: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह

0: ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षक की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports.

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गज़लों का आनंद ले रहे थे। फनकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है बप्पी लहरी और आशा भोसले ने। बोल इंदिवर के हैं, वधुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए फिल्म हीरो का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी के हैं तथा आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और मनहरे ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स

0: करते ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूं जो अपनी रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं फारूक कैसर का लिखा एवं बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। बप्पी लहरी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते।

श्रोताओं, और अब अंत में सुनिए खुद गर्ल्स। इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को सुरों में पिरोया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। बोल इंदिवर के हैं, वह धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं आरती अंकलेकर टिकेकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन। तो आइए सुनते हैं इनका गाया राग विभास। विलंबित ख्याल 3 ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं सो अब मोरे सजनवा, जबकि मध्यालय 1 ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तारवा गिनत गिनत।

0: अभी आप आरती अंकलेकर टिकेकर का गाया राग बिभा सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम में आज प्रसारित किया गया आरती अंकलेकर टिकेकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।

0: में दर्द, उल्टी और कमजोरी।
1: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
0: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
1: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
0: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
1: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
0: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
1: अगर बुखार हो तो रक्त की जांच करवाएं।
0: अब हम कर सकते हैं।
1: अब हमें करना होगा।
0: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत कच्चे धागे फिल्म से गायक लता मंगेशकर और कुमार सानू आनंद बख्शी का गीत है, संगीत नुसरत फतेह अली खां का।

अगला गीत राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म से, आवाजें अलका याग्निक, जॉनी मुखर्जी और कुमार सानू की। विनोद महेंद्र के बोल हैं जतिन ललित का संगीत।

0: एकॉन और हमशिका अय्यर की आवाज़ों में अभी आपने रा वन फिल्म का ये गीत सुना और अब कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद.
1: Say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
0: Nexa. ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत गाता चल. और अब लीजिए सुनिए अर्जुन पंडित फिल्म का ये गीत, गायक दलेर मेहंदी और अलका याग्निक. दलेर मेहंदी का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल हैं.

एआर रहमान, मोहित चौहान और जावेद अली की आवाज़ों में अभी आपने रॉक स्टार फिल्म का ये गीत सुना। और अब अगला गीत प्यार कोई खेल नहीं। इस फिल्म से गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

और अब अगला गीत मिले ना मिले हम, इस फिल्म से आवाजें शान और श्रेया घोषाल की, जावेद अख्तर के बोल साजिद वाजिद का संगीत है।

बी केयरफुल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, हमजा फारूकी की आवाज़ थी, कुमार के बोल थे, सिद्धार्थ सुहास का संगीत था। और अब अगला गीत अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज़ों में सुनिए, बारूद फिल्म का गाना, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए देसी बॉयज फिल्म का ये गाना मीका सिंह और शिफाली अल्वारेज़ की आवाजों में, कुमार की बोल प्रीतम का संगीत, और ये है हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, इसकी 1306वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है,

0: दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।

उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली।

0: रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
2: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो

0: पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
0: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
0: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
1: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
1: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
1: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
1: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
1: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
1: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
1: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
1: मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
1: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
1: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
6: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ

0: भी है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1306वीं कड़ी।

जी हाँ श्रोताओं, आज एक ही कलाकार समर्पित है अनुराधा पौडवाल पर। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1954 को हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। बचपन से ही संगीत इनके रगों में बह रहा था, पर उन्हें कहाँ अंदाजा था कि वे आगे चलकर एक प्लेबैक सिंगर बनेंगी।

उनका असल नाम अलका नाडकर्णी था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी और वे महान गायिका लता मंगेशकर से प्रेरित थीं।

अनुराधा पौडवाल जी ने हिंदी, मराठी, उड़िया, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, संस्कृत सहित अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए।

0: श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, आज एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित है अनुराधा पौडवाल पर। फिल्म आशिका का ये गीत अनुराधा पौडवाल जी की जिंदगी का वो गीत बना जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी।

इन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्म के लिए ही नहीं गाए, बहुत सारे भक्ति गीत भी गाए हैं। माधुरी दीक्षित रही हो या पूजा भट्ट, सभी के लिए इनकी आवाज़ बहुत ही जचा करती थी। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में अनुराधा पौडवाल जी वो गायिका बनकर आई जिनकी जगह पाने के लिए लोग काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम। इसके तहत आपने सुना अनुराधा पौडवाल के गाए गीत। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं श्रोताओं। अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

శ్రోతలు ఇప్పుడు గానలహరి కార్యక్రమంలో వినండి ఈ పాట మీకోసం.

0: अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ,
0: किसने लिखा है मालूम है? दुड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दुड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार हैं।
0: इस गाना का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहावु हारू तिहावु
1: हारू तिहावु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी तो मुगिल
1: यनी तो मुगिल
0: उद्द अगल
1: उद्द अगल
0: जी की दानी तू
1: जी की दानी तू
0: बांदला
1: बांदला।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंज है।
1: हाँ,
0: आगे का स्टंज है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बजे
1: व्योम कानुआ बजे
0: हसी व मरेसी
1: हसी व मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टंजा हाँ। वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिखते हैं।
1: हाँ,
0: हाँ,
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ, इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ, हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताइए।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन से राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। आप पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम का पहला गीत हम ले रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गीत और संदेश इस कार्यक्रम में भेजना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए। हमारे नंबर 9474234000 पर, 9474234000 पर। और अब राजधानी रायपुर से नील मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने।

शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बाबुल फिल्म का गीत। नौशाद की रचना है, शकील बदायूनी का संगीत है और इस गाने को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खां, हसीन बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।

और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, संगीत राहुल देव बर्मन का। और इस गाने को सुनना चाहते हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम और नफीस प्रवीण और जहानलुन हुदा ने।

और अब गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता सुनना चाहते हैं उपासना फिल्म का गीत जिसे गाया मुकेश ने। इंदिवर की रचना है कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

और अब आइए सुनते हैं दत्तरेंगी भट्टपारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नुखिल लाल वर्मा की फरमाइश पर मुस्कान फिल्म का गीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें, समीर की रचना है, निखिल विनय का संगीत है।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त

0: हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने
4: सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
4: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर

0: परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में तीन दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, आरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। और अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा हुई, जबकि कहीं कहीं पर तेज हवाएं रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि तेज हवाओं के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर बाद के 2:32 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, लेकिन अब से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz पर FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम से। हमारा ये प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को देवकी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहे, लेकिन जब तक हम आपसे जुड़ते हैं तब तक लीजिए सुनिए ये गाना बाजीराव मस्तानी फिल्म से।

0: और अभी श्रोताओं सुमी सिप्पीघाट से हमसे जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सुमी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या कर रही थी इस वक्त आप?
1: अभी मैं खाना खाकर बैठी थी, आराम कर रही थी।
0: अच्छा, क्या स्पेशल था आज?
1: आज मटर पनीर की सब्जी थी मैडम।
0: अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है और मेरी भी फेवरेट है। चलिए, तो कौन सा गीत है जो आज सुनेंगे इस प्रोग्राम में?
1: मैम हैप्पी न्यू ईयर मूवी का मनवा लागी।
0: जी जी, बहुत ही खूबसूरत
1: जी,
0: गाना है।
1: ये गाना सुना दीजिएगा।
0: हाँ जी, वैसे सुमी जी आपके बारे में जानना चाहेंगे,
1: जी
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: मुझे कुकिंग करना, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है मैडम, और सभी तरह के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके बागीचे में इस वक्त क्या क्या लगाया है आपने?
1: बगीचे में अभी तो फ्लावरिंग का ही प्लांट लगाया है मैडम।
0: अच्छा, और खाने में ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं आप?
1: मुझे बिरयानी पसंद है।
0: जी, वो तो सबकी पसंद है। चलिए,
1: जी
0: तो सुमी जी, अब आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, सुनिएगा। कॉल
1: धन्यवाद
0: उठाने के लिए
1: मैम,
0: आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हाँ जी, यासीन से हमारी बात हो रही है।
1: जी, मैडम
0: हाँ जी, कैसे, क्या कर रहे थे आप?
1: नमस्कार जी,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: खाना खा रहे थे? अच्छा
0: अच्छा, चलिए, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको?
1: ना ना, हो चुका था, हो चुका
0: अच्छा
1: था,
0: अच्छा
1: कोई दिक्कत नहीं।
0: चलिए।
1: ये तो खुशी, सुनिए, श्रोताओं के लिए खुशी की बात होती है जब उनका गाना बजता है, जब उनका गाना रिकॉर्डिंग होता है। उसका बचपन से ये सब खुशी का माने आनंद हो जाता
0: बात हो जाती है। जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। और बताइए, कैसा मौसम है वहाँ?
1: है। मौसम तो बारिश वरिश हो रही है कभी कभार, इसलिए मौसम अभी फिलहाल ठीक है, मौसम बहुत सुहाना
0: झारखंड के हैं आप?
1: है। जी, जा रहा
0: चलिए, जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो सुनेंगे।
1: है। मूवी का नाम है धो कहियां,
0: जी।
1: गीत के बोल हैं, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। ये
0: बहुत
1: फिल्म बचपन में देखे थे इसलिए ये गीत मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा, गाने सुनने का
1: इसको हम
0: शौक रखते
1: डेडिकेट
0: हैं?
1: करना, हाँ जी, डेडिकेट करना चाहेंगे अपना पोता पोती को, सैमा
0: अरे वाह,
1: नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, निफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया।
0: चलिए, आपके सभी परिवार वालों के लिए हमारी ओर से सुनिएगा ये गीत। ओके यासिन जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हाँ जी, सुनैना आटम पहाड़ से बोल रही हैं।
1: जी, मैं सुनैना बोल रही हूँ।
0: हाँ जी सुनैना जी, कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और लंच आपका हो गया?
1: जी, लंच हो गया था, अभी वो प्रोग्राम सुन रही थी।
0: चलिए, आपका कॉल भी लग चुका है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत आज सुनेंगी।
1: मुझे क्या कहना मूवी का ए दिल लाया है बहार, ये गाना सुनना है।
0: अच्छा, वैसे सुनैना जी, कौन कौन है आपके घर पे?
1: मम्मी है, भाई है और एक दीदी है, उनकी शादी हो चुकी है, तो
0: अच्छा
1: हम घर
0: अच्छा
1: में 3 लोग ही है जी।
0: अच्छा तो गीत सुनने का शौक है आपको?
1: सारे गाने पसंद है, नए पुराने सारे
0: अच्छा,
1: तरह के गाने पसंद है।
0: चलिए अच्छा लगा जानकर। तो सुनैना, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं क्या कहना मूवी का ये गीत, सुनिएगा।
1: धन्यवाद।
0: ओके।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार
0: जी नमस्कार। धीरज जी से हमारी बात हो रही है।
1: जी
0: धीरज जी, इतनी दूर से कॉल लगा है, अहमदाबाद से, तो जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो आज इस प्रोग्राम में आपको सुनना है।
1: प्रकृति से जुड़ा हुआ गाना है, फिल्म है सेहरा,
0: जी
1: पंख होती तो उड़ा दी है।
0: जी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है ये गाना, तो मिलकर सुने ये गीत।
1: जी जी
0: चलिए कॉल कर।
1: धन्यवाद।
0: हाँ जी, धन्यवाद।

0: निःशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड।

0: सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल

0: संस्कार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हेलो डियर फ्रेंड्स।
3: हेलो, हेलो डियर फ्रेंड।
2: हाँ जी,
3: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, रंगापारा सोनीतपुर असम से।
2: कैसे हैं अमल जी?
3: बहुत अच्छे हैं, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और आज ज्यादा गर्मी नहीं हो रहा है, मतलब आज ठंडा हो रहा है, बारिश दे रहे थे, अभी भी थोड़ी देर के बाद बारिश आएगा कि सर।
2: अच्छा, तो काम काज क्या करते हैं अमल जी आप?
3: काम का तो हम खेती बाड़ी के साथ जुड़ता हूँ, कल से धान लगा हुआ है, आज भी लगाया था।
2: अच्छा अच्छा, तो आप खेत जाकर आ गए?
3: सॉरी,
2: खेत जाकर आ गए आप सुबह?
3: हाँ हाँ, खेत जाके आ गया, दिन भर एक बजे से एक बजे घर पर आया था।
2: अच्छा चलिए,
3: अभी प्रोग्राम में अभी जुड़े रह के है।
2: हाँ चलिए, लाइन थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लग रही है, जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो सुनेंगे अमल जी?
3: साहिबान फिल्म का गाना सुनना है।
2: साहिबा फिल्म का कौन सा गीत?
3: बांसुरी, ये बांसुरी।
2: जी, बहुत ही खूबसूरत।
3: बांसुरी भी बजता है और बांसुरी बनाता है, किसी दोस्तों को भी साथ बांसुरी बना के देती है और बांसुरी सिखाती भी है दोस्तों को।
2: आप
3: जी?
2: अरे बहुत अच्छी बात है। तो
3: मैं पहले मैं दोस्तों को नाम लेना चाहूंगा।
2: जरूर,
3: हमारे दिल्ली से है धर्मवीर है और शिमला से राकेश है और भगवान सिंह परमार है और रमेश प्रजापति है
2: जी,
3: और हमारे दोस्त है बिमल बसुमतारी है, वो भी मेरे साथ ही है। बिमल बसुमतारी जी, दीदी को नमस्कार कहिए।
2: जी
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी।
4: जी मैम, हम बिमल बसुमतारी बोल रहा हूँ धेमाजी असम से। रोज सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है, टाइम आने से तो रोज सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का प्रोग्राम।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमारी प्रोग्राम सुनते रहते हैं
3: जी। और हमारे दोस्तों को याद कर लेता हूँ पहले, और भी दोस्त है हमारा, चंद्रकांत थाट है और संध्या रानी गोगोई है, भाईकोन मुंडा, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंगपी और हितेंद्र दास है असम से है
2: जी।
3: इन लोगों को सुनाना चाहता हूँ मैं ये गाना।
2: चलिए तो मिलकर सुने ये गीत।
3: जी जी
2: चलिए,
3: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: आपका भी शुक्रिया
3: जी।

0: वो चलेगा,
1: ये
0: वाला
1: चली गया, छोड़ दीजिए।
0: डाले
1: ये तो जाते ही नहीं है।
0: हाँ

0: জন্য ও
1: মেহমান
0: কালি
1: জন্য

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से ये गीत आशा भोसले जी की आवाज में। कार्यक्रम कुछ देर बाद जारी रहेगा, तब तक आप सुनिएगा ये गीत बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हाँ जी, पलक से हमारी बात हो रही है।
1: हाँ जी मैम,
0: जी पलक, क्या कर रहे थे इस वक्त?
1: बैठी थी, बस कॉल लगा रही थी मैम।
0: प्रारगंज में रहती है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा पलक जी, क्या करती हो आप?
1: अभी तो फिलहाल 12th हुआ है मैम।
0: तो 12th हुआ है मतलब रिजल्ट्स आ गए आपके,
1: हाँ जी
0: तो पास हैं आप।
1: जी।
0: आगे क्या
1: आज
0: करने
1: परसेंटेज
0: आगे
1: आगे
0: क्या
1: टीचर
0: करने का सोचा है आपने?
1: ट्रेनिंग।
0: अच्छा, तो आपने सब कुछ टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी करना है वो सब कर लिया?
1: अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है मैम, मुझे जब जिस कॉलेज में जाना है तो जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं फॉर्म अप्लाई करूंगी।
0: अच्छा, तो आपने किस JBT करना है, या तो आपको PST करना है?
1: टाइगर कॉलेज का तो सोचा है मैम मैंने।
0: अच्छा, तो आपको BEd करना है। किस सब्जेक्ट में
1: जी
0: करेंगे आप?
1: इंग्लिश।
0: इंग्लिश पसंद है आपको?
1: जी
0: चलिए, तो आज कौन सा गीत सुनेंगी बता दीजिए जल्दी से।
1: फिल्म का नाम है गब्बर इज बैक और गाने की बोल है तेरी मेरी कहानी।
0: जी बहुत ही अच्छा गीत है, तो पलक सुनते हैं ये गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हाँ जी, सुनील झा से हमारी बात हो रही है, एमपी से।
1: हेलो
0: हेलो, सुनील झा जी बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो, सुनील झा जी, आवाज़ आ रही है मेरी?
1: जी, आप सही आई आवाज़।
0: अच्छा, तो एमपी से सुनील झा जी है ना?
1: जी,
0: भोपाल
1: मध्य प्रदेश से।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: बताइए, एमपी का इस वक्त वेदर कैसा है?
1: वेदर तो अभी बादल छाए हुए हैं, आंधी भी आ रही है और थोड़ा बारिश भी हो रही है, दोनों मिक्स मौसम है अभी।
0: अच्छा,
1: थोड़ा हाँ कम बारिश हुई तो क्या है,

0: उमस भी ज्यादा हो रही है।
1: इस पर थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी, है ना?
0: हाँ, थोड़ा अभी थोड़ी बारिश से कुछ नहीं होता क्या? बारिश तो हो रही है, थोड़ी बूंदे पड़ती तो जो क्या है, अभी जो जमीन है तो उससे उमस ज्यादा हो रही है।
1: अच्छा, तो चलिए, कौन सा गीत है जो आज सुनेंगे इस प्रोग्राम में?
0: ये 90 वर्ष आकाशवाणी ने पूरे किए हैं, तो इसके लिए मैं आप आकाशवाणी टीम को बधाई देना चाहता हूँ।
1: धन्यवाद आपका।
0: तो गीत तो अभी तो क्या है, जुदाई फिल्म का है, शादी करके फंस गया, अच्छा खासा था कवारा। चलो
1: अच्छा, तो चलिए मिलकर सुने ये गीत।
0: दोस्तों के नाम ले सकते हैं,
1: जरूर, जल्दी से ले लीजिए।
0: ये हमारे लोकेत वर्मा जी हैं, शुभाराम यादव जी हैं, गौतम रायवोली जी हैं, धीरज भाई रेवाड़ी जी हैं, दीप आहूजा जी हैं, और गंगाधर सावंतर जी हैं, और हमारे हर शर्मा से प्रेरणी ग्रुप सभी श्रोताओं की भी डेडिकेट रह जाएगी। जी
1: चलिए, तो सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, सुनिएगा।
0: जी नमस्कार।
1: धन्यवाद।

ये है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आग FM श्री विजयपुरम। श्रोताओं, दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहूं।

सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब दो सुरीली आवाज़ें एक साथ मिलती हैं तो संगीत एक नया जादू रचता है। जी हाँ, आज इस संगीतमय सफ़र में हम लेकर आए हैं आपके लिए सदाबहार युगल गीत।

दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, और अक्सर हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हम किसी की मोहब्बत में डूब गए। ये एहसास अचानक ही दिल पर दस्तक देता है, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक दिल पूरी तरह किसी के नाम हो चुका होता है।

सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब दो सुरीली आवाज़ें एक

मिलती हैं तो संगीत एक नया जादू रचता है। जी हाँ, आज इस संगीत में सफर में हम लेकर आए हैं आपके लिए सदाबहार युगल गीत। दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, और अक्सर हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हम किसी की मोहब्बत में डूब गए। ये एहसास अचानक ही दिल पर दस्तक देता है, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक दिल पूरी तरह किसी के नाम हो चुका होता है।

दोस्तों, जब दिल में एक अनजाना सा एहसास जन्म लेता है तो मीठी सी हलचल होने लगती है। वो खुद से ही पूछने लगता है, क्या ये जो महसूस हो रहा है वो सच में प्यार है? जी हाँ, प्यार का पहला एहसास हमेशा सवालों से भरा होता है। क्या ये वही जज्बात हैं जो हर धड़कन को तेज कर देता है?

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत उन तमाम दिलों की दास्तां है जो सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत में वो मुकम्मल मोहब्बत नहीं लिखी होती। जिन्हें ये मिल जाए वे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। दोस्तों, प्यार में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से निभाना भी होता है। आज भी जब प्यार, तकदीर और किस्मत की बात होती है तो ये गीत बरबस ही जुबां पर आ जाता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला मनिंगी रोखर हमांग इंगरे ता लमक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अनी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
2: काले वानु ये होंग ये वांग जकरेल कुई चकुआ लाक वाव करे अट काले एन बिन का गया नहीं गम मलेरिया इन वाहन लो देन गम मलेरिया इन वाले तक किना पही अंत गम एनो फेलिस जंग कन मिसो के ये ही अटिला रन ले एनर गाइ मि हो ए बॉय हगेन वहाव उनत मजरता नो व ये ही हारो उन हे के नुप त यु ग वाक नेता सी पति ही उनत ले नेन कुपी कुई नु टैंक की हे किन को कुई नु भानरी ये ही यही वत ग वानु ये इला रन ए हम तरे ए चक्का महाम रे मि हो इन तो हो मि हो इन गाइ होल रन द ए लाल गम मलेरिया इन वा।

0: Ti kagnya, Benjamin Crispin antah nga manaha ang hitin ke ka. Hoya nga til nga hang in nga cinta mo hik in hurich. Hangrong ita kasata ita fan kano tala harap ngayon.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में सुनिए हरिहरन की आवाज़ में चंद गज़लें। पहले पेश है मुमताज़ रशीद का कलाम।

अभी आप सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हरिहरन की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का आप आनंद ले पाएंगे 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे। विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल। अतिथि होंगी डॉक्टर सुजाता। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप डॉक्टर पूजा कपूर के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन से आमदनी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला का आप आनंद ले सकेंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी कार्यक्रमों का जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएँ आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चा और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे यादें। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। ये तो थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे हल्दी व अदरक उगाए विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा क्षमा शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे 6:50 पर। 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम होगा देश रागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर आप विभिन्न कलाकारों को सुन पाएंगे। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप त्रिचूर वीर रामाचंद्रन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे 9:30 पर। सुबह 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11:00। 11:30 पर आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे चित्र गीत। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानी के साथ फिल्मी गीत 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाम अली, आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्म संगीत का कार्यक्रम, नॉन स्टॉप म्यूजिक और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप सैमुअल एंड्रयू के से गीत सुनेंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर उलगम। बांग्ला कार्यक्रम में आप त्रिधारा सुनेंगे 5:30 पर। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बाहर का समय रहेगा 6:30। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में देश बंधु चितरंजन दास की पुण्यतिथि पर चर्चा और देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा सुरों के जादूगर हेमंत कुमार पर। फिल्मी दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 8:00। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशें आते हैं रात्रि 10:00 आप सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात्रि 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कुमार सानू और सुनंदा की आवाज़ों में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गाना। फिल्म है संग्राम, गीत समीर के तथा संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए पंकज उदास का गाया फिल्म बाजीगर का ये गाना। गीत रचना रानी मलिक का तथा संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं त्रिवेणी भवानी के संगीत निर्देशन में तैयार इंदिवर की गीत रचना, जिसे गाया है विनोद राठौर और पूर्णिमा ने, तथा फिल्म का नाम है मेरे हमसफर।

0: एआई अपनाया।
1: ये आई, ये क्या है?
0: एआई यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
0: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
2: हाँ, एआई अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
3: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: नमस्कार किसान भाइयों, बदलेगी तकनीक तो बढ़ेगी आपकी तरक्की। खेती किसानी को आसान और मुनाफेदार बनाने वाले कार्यक्रम कृषि जगत में मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं। कहते हैं कि एक अच्छा विचार पूरे दिन को बेहतर बना देता है, तो चलिए मेरे किसान साथियों, बिना देर किए रुख करते हैं आज के नेक विचार की ओर। और आज का नेक विचार है, जैसे सही समय पर बोया गया एक छोटा सा बीज आगे चलकर एक विशाल और फलदार पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही आज की गई आपकी छोटी सी सही मेहनत और सब्र आपके भविष्य को खुशहाली से भर देता है। जी हाँ किसान साथियों, खेती में सब्र और सही तकनीक ही हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। नेक विचार के बाद आइए अब सुन लेते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, जैविक खेती में फसल चक्र अपनाना क्यों जरूरी है? किसान साथियों, प्रश्न एक बार फिर दोहराते हैं, जैविक खेती में फसल चक्र अपनाना क्यों जरूरी है? किसान भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ।

0: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, अच्छी खेती के लिए जितना जरूरी खेत की सेहत का होना है, उतना ही जरूरी है हमारे खुद के शरीर का स्वस्थ होना। और शरीर को निरोगी रखने का सबसे उत्तम साधन है योग। जैसा कि किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि 14 जून से लेकर 21 जून तक पूरे विश्व भर में योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसी पावन मौके पर आइए, आज कृषि जगत में हमारी चर्चा का मुख्य विषय है योग, इसकी तकनीक, आसन और लाभ। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और जीवन शैली

बुक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसी पावन मौके पर आइए, आज कृषि जगत में हमारी चर्चा का मुख्य विषय है योग, इसकी तकनीक, आसन और लाभ। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और जीवन शैली है, जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली और विज्ञान है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाता है। इसमें विभिन्न मुद्राओं और श्वास तकनीकों का अभ्यास शामिल है, जो तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अत्यंत प्रभावी है। प्रमुख योगासन और उनकी तकनीक क्या है? पहला आता है ताड़ासन। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास अंदर लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचे और पंजों के बल खड़े हो। कुछ देर रुके और सामान्य अवस्था में आए। लाभ इसमें यह होता है कि शरीर का संतुलन सुधरता है, लंबाई बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। प्राणायाम, श्वास की गति पर नियंत्रण रखकर शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना। ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, मन को एकाग्र करना और मानसिक तनाव को पूरी तरह शांत करना। शौच यानी क्रिया, शरीर के आंतरिक अंगों को शुद्ध करने वाली तकनीकें, जैसे कपालभाती। पवन मुक्तासन, पाचन के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। पीठ के बल सीधे लेट जाए, दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास लाए, हाथों से घुटनों को पकड़े, सांस छोड़ते हुए सिर उठाए और नाक को घुटनों से छूने का प्रयास करें। इसमें विशेष लाभ यह होता है कि पेट की गैस, कब्ज और अपच को जड़ से खत्म करता है और लीवर को सक्रिय करता है। शवासन, मानसिक शांति के लिए यह आसन किया जाता है। पीठ के बल सीधे लेट जाए, पैरों के बीच एक फीट की दूरी रखें, हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखें, आंखें बंद करके केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें लाभ यह होता है कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, थकान मिटाता है और गहरी नींद लाने में मददगार होता है। योग के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ भी है। नियमित रूप से योग करने के शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं। योग शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है, जिससे चिंता, डिप्रेशन और गुस्सा नियंत्रित होता है। यह मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, जिससे जोड़ों का दर्द ठीक होता है और शरीर का लचीलापन बढ़ता है। रोग रक्त संचार को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों से बचाता है। प्राणायाम और आसन शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन से भर देते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। वजन नियंत्रण करता है। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे अतिरिक्त चर्बी तेजी से घटती है। योग की शुरुआत हमेशा किसी प्रमाणित योग गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। किसान साथियों, अभी आप चर्चा सुन रहे थे। योग और ढेर सारी बातों के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। किसान साथियों, आज हम खेती की उस आधुनिक तकनीक पर बात कर रहे हैं जो हमारी फसलों की किस्मत बदल सकती है। तो आइए किसान साथियों, फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन से आमदनी के संदर्भ में डॉक्टर पूजा कपूर से की गई यह बातचीत।
1: आज हम कुछ चर्चा करेंगे मूल्य वर्धन द्वारा किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस संदर्भ में, और हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर पूजा कपूर। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जो मूल्य संवर्धन का हम आज जिक्र कर रहे हैं, तो पहले जरा किसानों को स्पष्ट कर दें कि मूल्य संवर्धन से वो क्या समझे।
2: सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। तो हम चर्चा करेंगे कि वैल्यू एडिशन या मूल्य वर्धन क्या है। जब कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर कमोडिटी को हम एक लेवल ऊपर ले जाते हैं तो उसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। सिंपल शब्द में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि किसान अपना आम की खेती में से आम तोड़ता है और वो देखता है कि कुछ आम काफी बड़े साइज के हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, अपीलिंग है, तो वो उसे छांट लेता है, बड़े आमों को ग्रेडिंग दे देता है, ए बी सी ऐसे करके, फिर वो अपने हिसाब से ग्रेडिंग दे देता है। तो ये भी एक प्रकार का वैल्यू एडिशन है।
1: बिल्कुल।
2: सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल था उसकी ग्रेडिंग करना। इसके बाद अगर हमने उसमें प्रोसेसिंग की, आम से आम पना बना लिया, कैंडी बना ली, आम पापड़ बना लिया, स्क्वॉश बना लिया, जैम बना लिया, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग के द्वारा हमने वैल्यू एडिशन उसमें डाल दी, जिससे कि कीमत जो प्रोडक्ट की थी वो काफी बढ़ जाती है।
1: तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन से एक तो है कि किसानों का मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है। इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इससे किसानों को और क्या क्या फायदे हो सकते हैं वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन से?
2: तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि आजकल बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है फार्मर की आय जो है वो हमें डबल करनी है। तो ये जो माध्यम है प्रोसेसिंग का या वैल्यू एडिशन का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, दुगनी कर सकते हैं। लगभग 20-40% मुनाफा बढ़ जाएगा अगर किसान भाई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बेचे। तो पहली बात ये हो गई, हमें अपने किसानों की आय बढ़ानी है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रोडक्शन, जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करते हैं, तो नंबर 2 स्तर पर आता है पूरे विश्व में, परंतु यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी भी काफी दर्दनीय है। हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर्स होते हैं। ये जो ग्रुप है इसे हम प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारी अलग अलग और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। इवन अगर आप कैंसर ले लें तो उसे भी रोकने की क्षमता हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलती है। तो प्रोसेसिंग के द्वारा या वैल्यू एडिशन के द्वारा हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा के प्रोसेसिंग करके जो पोषक तत्व मौजूद है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उसे हम अपने कस्टमर्स तक या लोगों तक या पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या जो पोषण की जरूरत होती है उसकी भी एक सुरक्षा वैल्यू एडिशन से, मूल्य संवर्धन से मिल सकती है। इसके अलावा मैडम, हम देखते हैं कि जो किसान है हमारे देश में, खाली द्वीपों में नहीं, बहुत सारा जो कृषि उत्पाद है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो मंडी तक पहुंच नहीं पाता या इनके शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होते हैं, तो वैल्यू एडिशन इसमें भी उनकी मदद कर सकता है।
2: बिल्कुल सही। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो अगर हम सिर्फ केवल

0: इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 15 से 30% प्रोडक्शन लॉस हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ जैसे आप कह रहे थे बहुत ही कम होती है। तो इससे बचने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोसेसिंग करके।
1: और जो किसानों की मेहनत है वो भी जाया नहीं जाएगी, और हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा राष्ट्र का धन है जो किसान उत्पादित करते हैं उसको अगर
0: जी
1: हम नुकसान होने से बचा लें तो भी बहुत अच्छी बात होगी।
0: तो हम लोग की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और वैल्यू एडिशन को अपनाएं, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर एक स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट अगर एस्टेब्लिश हो सके तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, जिससे बहुत सारे फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है जो वो अभी इस समय फेस कर रहे हैं उससे वो पार पा सकेंगे।
1: जी हाँ, मूल्य संवर्धन के लिए कौन से उत्पाद ज्यादा उचित हैं या किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है जिस पर आप लोग एम्फेसिस दे सकते हैं?
0: जी बिल्कुल सही, जैसे सब जानते हैं यहाँ केले की बहुत ज्यादा खेती होती है, साथ में मैंगो के सीजन में आप देखेंगे कि रोड के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ हैं और उसमें जो फल लगता है वो नष्ट हो जाता है, उसे गाय और बकरी भी नहीं खाती है, तो ये देख करके बहुत तकलीफ होती है। प्रोडक्टिविटी हो रही है पर उससे प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। तो मैंगो है, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, केला है, पपीता है, ये सब काफी मात्रा में होता है पर प्रोसेसिंग इसकी नहीं हो पा रही है। आम का पापड़ बनता है वो बना दिया जाए, स्क्वॉश, आमचूर पाउडर, अचार, ये सब कोई नई चीजें नहीं है। ये सब काम को अगर हम जारी रखे बेशक वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या कमर्शियल प्रोसेसिंग करके तो काफी फायदा मिल सकता है। जैक फ्रूट यहाँ पे बहुत होता है, उसके चिप्स बन सकते हैं, केले के चिप्स बन सकते हैं, बनाना का फ्लावर बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, पिक बना सकते हैं केले से। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जियां है उसका पाउडर बनाकर, डिहाइड्रेशन के द्वारा उसका पाउडर बनाकर बेच करके, खासकर मैं कहना चाहूंगी ड्रमस्टिक लीव्स का पाउडर, सजना पत्ती का पाउडर, इसकी बहुत सारे पोषक तत्व हैं और ये एक ऐसी पत्ती है जो इसमें बहुत सारे बीमारियों को रोकने की शक्ति है, तो इसका पाउडर बना करके बेचा जा सकता है। हमारे पास सागरी का एक यूनिट है, वहां पर किसान भाई अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, धनिया पत्ती का प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बना करके बेचे जा सकते हैं।
1: जी हाँ, ये मूल्य संवर्धन में कहीं तो चुनौतियां हैं जिससे कि किसान इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं?
0: जो मेजर चुनौती हमें जो दिखाई यहाँ पे देती है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पे स्टोर करने की किसान भाइयों के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है इसे हमें ओवरकम करना है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या सीनियर अथॉरिटीज के द्वारा। यहाँ पे हमें हर जगह एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर फार्मर्स भी कंफर्टेबल होके अपनी जो उत्पाद है उसे रख सके और जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट हो धीरे धीरे करके उसे प्रोसेसिंग कर सके। और जो दूसरी बात है कि वहाँ पर प्रोसेसिंग की उतनी फैसिलिटीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई अभी तक नहीं है, तो अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर बनता है तब एसएचजीज उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट बना करके, ब्रांडिंग करके, लेबलिंग करके वो बेच सकती है। मुझे लगता है ये काफी बड़ी चुनौती है, पर जैसे हमारे पास हमेशा चुनौतियां आती रहती है और उसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आगे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, तो हमें बस कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, प्रयास करना है और आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल मैडम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो एक और तो जहां इनकी शेल्फ लाइफ या रखने की अवधि बढ़ जाती है, साथ ही अच्छा जो दाम है, मूल्य है, वो भी मिल जाता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो डॉक्टर पूजा कपूर, आज आपने मूल्य संवर्धन द्वारा किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, जैसे कि सरकार की योजना है दुगनी करना, इस संदर्भ में हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन से आमदनी के संदर्भ में डॉक्टर पूजा कपूर से की गई यह बातचीत सुन रहे थे।

स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान, सुरक्षित भविष्य। किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता उसके खेतों से होकर गुजरता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की मिट्टी को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन आधुनिक समय में अधिक पैदावार की ओढ़ में हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता लगातार कम हो रही है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान देश की मिट्टी को बंजर होने से बचाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण मिट्टी की सेहत बहुत खराब हो गई है। मिट्टी में मौजूद जरूरी सूक्ष्म जीव और कार्बनिक तत्व तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए खेत बचाओ अभियान जगह जगह पर हो रहा है। किसानों को यूरिया और डीएपी के असंतुलित उपयोग को कम करने के लिए जागरूक करना, हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच करना ताकि पता चले कि मिट्टी को वास्तव में किस पोषक तत्व की जरूरत है, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ाना, मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और केंचुआ खाद के उपयोग पर जोर देना। यह अभियान केवल कागजों पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर काम कर रहा है। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी गांवों में जाकर चौपाल लगा रहे हैं और किसानों को मिट्टी बचाने के व्यवहारिक तरीके सिखा रहे हैं। देश भर में हजारों सरपंच सम्मेलन, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करोड़ों नागरिकों और लाखों किसानों तक इस अभियान का संदेश पहुंचाया जा रहा है। खेत बचाने के साथ साथ खेत बचाओ अभियान केवल मिट्टी बचाने का प्रयास नहीं है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी है। यदि आज हमारी मिट्टी बीमार होगी तो उससे पैदा होने वाला अनाज भी हमें बीमार बनाएगा। इसलिए मिट्टी की सेहत सुधारना हर किसान और देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हमारे खेत बचेंगे और मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमारा देश सही मायनों में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा।

किसान साथियों, अभी आप चर्चा सुन रहे थे, विषय था खेत बचाओ अभियान। तो किसान साथियों, अब समय हो चला है आपके उस इंतजार को खत्म करने का। आइए जानते हैं हमारे पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर जानने का। प्रश्न था, जैविक खेती में फसल चक्र अपनाना क्यों जरूरी है? और इसका उत्तर है, लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है। दलहनी फसलों को चक्र में शामिल करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है। किसान साथियों, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। उम्मीद है कि इस सवाल के माध्यम से जिन साथियों को पता था उनका भरोसा पक्का हो गया होगा, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें आज एक नई और बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।

0: 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ किसान साथियों, अब घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म नौटंकी साला से। कौसर मुनीर के गीत को संगीत दिया है मिकी मैक्लेरी ने। गायक है फलक शाबिर।

क्षितिज तरेज, श्याम भट्ट, मिथुन और किरण कामत को अभी आप फिल्म मर्डर टू में सुन रहे थे। गीत रचना सैयद कादरी और कुमार और मिथुन का था, तथा संगीत दिया था मिथुन संगीत, सिद्धार्थ हल्दीपुर, हर्षित सक्सेना ने। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर की गीत रचना। संगीत अनु मलिक का है तथा फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

लीजिए अब सुनिए फिल्म मैं तेरा हीरो में बिन्नी दयाल और शलमली कटपटिया को, संगीत साजिद वाजिद का है।

0: जावेद अख्तर की गीत रचना, गायक है रंजीत बरोद तथा फिल्म का नाम है मैं हूं ना।
1: Listen to me when I say

लीजिए अब सुनिए फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में वाजिद सुनिधि चौहान यूवी फरहाद और राजा मुस्ताक को। गीत जलीस शेरवानी का है तथा संगीत साजिद वाजिद का है।

0: not happening.
1: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं केके को फिल्म न्यूयॉर्क में। संदीप श्रीवास्तव के बोल को शुरू में पिरोया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों के बारे में। 7:15 पर मौसम की जानकारी, कार्यक्रम जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चा और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे यादें। रात्रि 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। आठ बजकर 35 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। ये तो थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे।

एग्री टिप्स में जानेंगे हल्दी व अदरक उगाए, विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। 6:15 पर।

कर 15 मिनट पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रात।

इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत के तहत आप ई एलंगो के साथ की गई बातचीत सुनेंगे खेल खिलाड़ी और योग विषय पर, और कुछ फिल्म गीत सुनवाया जाएगा। ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का

0: वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गए सैलरी?
4: हाँ।
3: नए झुमके?
4: ना, पहले बचत।
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने भारत की आर्थिक वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन की खुलकर प्रशंसा की है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियन में 92G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्री सुविधा दिवस पर राजधानी श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की सेवा और सुरक्षा का संदेश दिया गया, और खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत द्वीपीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए नवाचार आधारित खेती को अपनाने की अपील की गई।

सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक अभिसरण का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आज हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच सहयोग के नए द्वार खोलेगा। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट फिको ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 12वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 92वें G7 शिखर सम्मेलन में कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इसमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा

0: महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को रोकेंगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, यात्री सुविधा दिवस और खेत बचाओ अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यात्रियों को यह संदेश देना है कि हवाई अड्डा प्रशासन उनकी सुविधा, सुरक्षा और समय बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस अवसर पर यात्रियों की सुविधा, आधुनिक सेवाओं और हवाई अड्डे पर उपलब्ध बेहतर व्यवस्थाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम देशभर के कई हवाई अड्डों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार बीते वर्षों में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे और यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यात्रियों की सुगम आवाजाही, तेज सुरक्षा जांच, डिजिटल सेवाएं और बेहतर सुविधाओं ने हवाई यात्रा के अनुभवों को और अधिक सहज बनाया है। यात्री सुविधा दिवस के दौरान यात्रियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक मुनीर मदमम ने इस दिवस के बारे में जानकारी दी।
1: टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह जो भी है उनके लिए एक फ्री मेडिकल कैंप रखा था, बहुत अच्छा से उसमें लोग भाग लिया है। बहुत सारे लोगों को मेडिकल चेकअप, बेसिक मेडिकल चेकअप जो है हमने अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी हमने कुछ एक्टिविटीज भी रखा था जिसमें पैसेंजर्स भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया। तो आज सुबह 6 बजे से लेकर हमारा फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे तक जहाज पूरा दिन में वर्ल्ड हार्ट पार्टिसिपेशन पैसेंजर्स का, स्टाफ का, सब साथ में हम बहुत अच्छी तरह से आज यात्री सुविधा दिवस मनाया है।
0: देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान द्वारा कल जिला परिषद सदस्यों और प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, नवीन कृषि तकनीकों, टिकाऊ खेती और किसानों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर ने कहा कि अंडमान निकोबार के किसान नवाचार आधारित खेती में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अधिक वर्षा की समस्या से निपटने के लिए पॉलीहाउस खेती तथा मृदा संरक्षण हेतु ऊंचे क्षेत्रों में बांस रोपण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. वाई रामकृष्ण ने किसानों को हर 3 वर्ष में मृदा परीक्षण कराने और जैव उर्वरकों के उपयोग को अपनाने की सलाह दी। पद्मश्री सम्मानित नारियल अम्मा कमाची चेलम्मल सहित कई प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय की ओर से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन और आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थानों तथा संगठनों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। नामांकन और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी। निदेशालय ने पात्र व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों तथा अन्य हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने नामांकन और आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। पुरस्कार से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं पात्रता मानदंड राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने भारत की आर्थिक वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन की खुलकर प्रशंसा की है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियन में 92G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्री सुविधा दिवस पर राजधानी श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की सेवा और सुरक्षा का संदेश दिया गया और खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत द्वीपीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए नवाचार आधारित खेती को अपनाने की अपील की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:16 हुए हैं।

लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 जून तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी जॉलीबॉय सुबह 7 बजे 17 तारीख को माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान 18 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए एमवी कैमल बे 16 तारीख को सुबह 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर 20 तारीख को सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी, क्षमा कीजिए, एमवी कालीघाट

ग्रेटर अंडमान और निकोबार की यात्रा पर 19 तारीख को सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 20 तारीख को शाम 4 बजे निकोबार से छूटकर ग्रेटर अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट 25 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकोरी माका चूहा और अराफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान 28 तारीख को रात 8:30 पर कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान सिंधु नैनकोरी होते हुए कैमल पे जाने के लिए 16 तारीख को सुबह 9 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा और 18 तारीख को सुबह 6 बजे कैमल पे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटन कल सुबह 6 बजे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी स्टेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम आएगा। एमवी रानीचंगा कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉलीबॉय कल दिन में 11:30 पर स्वराजद्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता समाज सेवा पर्यावरण खेल कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम को सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया में। देव कोहली की गीत रचना है, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करें और अपने वर्तमान को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 15 जून को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह दुनिया भर में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ाने का संदेश देता है। दोस्तों, आज के समय में कई बुजुर्ग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करते हैं। कई बार उन्हें परिवार और समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता, जिससे वे अकेलापन और सुरक्षा महसूस करते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस लोगों को यह समझाने को प्रयास करता है कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है और उनके अनुभव तथा ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। नियमित योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव को कम करने में सहायता करता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम मन को शांत करते हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है। योग हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखने तथा जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करने की शक्ति देता है। इसलिए मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग को अपने दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए।
1: लेकिन ये कैसे होगा?
2: Y O G

0: सर।
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: महाराज।
1: यस
0: योगी।
1: दैट्स राइट।
0: वेलकम।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

दोस्तों, आज माह का तीसरा सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

जीवन की सबसे खूबसूरत अनुभूति है जो दिल को खुशियों, उम्मीदों और अनगिनत सपनों से भर देती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी को अपना मान लेता है तो वह उसके साथ अपना विश्वास, अपनी भावनाएं और अपनी जीवन का एक हिस्सा भी जोड़ देता है। लेकिन जब उसी प्रेम में विश्वासघात का सामना करना पड़ता है तो यह केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि विश्वास, उम्मीदें और दिल के कई अनमोल सपने भी बिखर जाते हैं। प्रेम और विश्वासघात की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम जितना सुंदर होता है, उसका दर्द उतना ही गहरा और यादगार होता है।

दोस्तों, अपने प्रियजन को गले लगाना केवल प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि उस पल को पूरी तरह महसूस करने का एक तरीका है। हम नहीं जानते कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, या फिर जीवन हमें दोबारा मिलने का अवसर देगा भी।

या नहीं। इसलिए जब भी हम अपने किसी खास इंसान को गले लगाते हैं तो उस आलिंगन में केवल प्यार ही नहीं बल्कि यादें, दुआएं और अनकही भावनाएं भी समा जाती है। शायद कुछ मुलाकातें आखिरी हो, इसलिए हर झप्पी को ऐसे संजोना चाहिए जैसे वहाँ एक अनमोल याद हो जो जीवन भर दिल में बसी रहे।

दोस्तों, दुनिया अक्सर कहती है कि मुस्कुराते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि कभी-कभी मुस्कान के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा होता है। जब विश्वासघात दिल को तोड़ देता है, तब हंसना भी एक कठिन संघर्ष बन जाता है। आंखों में आंसू होते हैं, पर होठों पर मुस्कान सजानी पड़ती है ताकि कोई भीतर के तूफान को ना देख सके। ऐसे समय में मुस्कुराना खुशी की निशानी नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की मजबूरी और साहस का प्रमाण होता है। हर मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी हो सकती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता।

दोस्तों, प्रेम का एहसास ही कुछ ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम दिल से चाहते हैं, उसके सामने आते ही दुनिया जैसे एक पल के लिए ठहर जाती है। मन में ढेर सारी बातें होती हैं, अनगिनत भावनाएं उमड़ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वह सामने आता है, सारे शब्द कहीं खो जाते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, नजरें झुक जाती है और मन बस उसी की मौजूदगी में खो जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल अपने सारे राज कहना चाहता है, लेकिन प्रेम की गहराई शब्दों को चुप कर देती है। कभी-कभी सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बस महसूस किया जाता है।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें रात्रि के 8 बजने वाले हैं।

लीजिए अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:11 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीत। फिल्म है तेरे नाम। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत समीर के तथा संगीत हेमेश रेशमिया का है।

लीजिए अब सुनिए मनोहर शेट्टी और अनुराधा पौडवाल को फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं. और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.
3: लीजिए अब सुनिए संदीप चौटा के संगीत निर्देशन में तैयार नितिन रायकवर की गीत रचना. गायक कलाकार है आशा भोसले और सुखविंदर सिंह. फिल्म का नाम है प्यार तूने क्या किया.

लीजिए, अब सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। गीत रचना राहत इंदौरी का, संगीत नदीम श्रवण का है तथा गायक कलाकार है अलका याग्निक और कुमार सानू।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। उद्योग निदेशक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा MSEODR योजना के अंतर्गत लीगल कंसल्टेंट के एक पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर मार्च 2027 तक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना तथा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकायों अथवा मध्यस्थता एवं सुलह से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 80,000 रुपये समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित 19 जून 2026 को 4:30 तक निदेशालय उद्योग श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय उद्योग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संपर्क करें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
4: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई

0: के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव

0: सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होरमूज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होरमूज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी

0: पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
0: Slovakia mein reh rahe bhartiya mool ke log yahan ki economy aur society mein mahatvapurna yogdan de rahe hain. Dono deshon ke beech professionals aur skilled workers ki mobility badhane ke liye aaj humne labor migration par एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर लॉडेड इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सेइंग द कंट्री हैज आउटपेस्ड मेनी एडवांस्ड नेशंस इन की सेक्टर्स।
2: आई कंग्रेचुलेट यू टू द रिजल्ट्स इन ऑल एरियाज which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए, सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस

0: हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
1: नमस्कार जी मुकेश जी, और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है जो उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। आज अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
1: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जायी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
3: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
4: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी।
4: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां।
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
0: जी, बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है।

0: फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें।
1: जी कमल जी, आपसे ना जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
2: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है। बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, पर रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
2: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो
2: उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ। हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
3: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बनाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले
1: जी।
0: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
4: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
4: दोनों नमस्कार है
1: जी। सवाल पूछिए।
4: मेरा सवाल ये है कि दिन में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रहता है परिस्थितियों से, तो इसे में योग
1: शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी,
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
5: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
5: डीजी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
5: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
5: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी
2: जी,
5: और योगा करने से वो ये होगा
2: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं, पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना दोनों पैरों से, तभी कर

0: जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें, साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
2: प्राणायाम और आसन
1: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूं, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
3: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर।
1: जी बताइए
3: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला श्वास के लिए बोला है ना कि श्वास, सॉरी कुछ
1: जी
2: है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें। उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, सवाल जी।
4: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रधानमंत्री
1: आपको भी शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
4: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
0: धन्यवाद रशीद जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डालें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़

0: मोटापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: हाँ, उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम,
0: जी
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं,
0: जी
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
0: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
1: हाँ
0: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
2: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही है, पैदा हुई हैं। ये
0: जी
2: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है।
0: जी
2: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ। हम लोग जहां जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है।
0: जी
2: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम
0: जी
2: कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत
0: जल्दी
2: तेज
0: जल्दी
2: तेज
0: कर
2: करने
0: लेते
2: लग
0: हैं
2: जाते हैं,
0: समय
2: उनका
0: की कमी
2: फायदा
0: के
2: नहीं होता,
0: कारण।
2: नुकसान होता है।
0: जी जी जी
2: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है। घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं। इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
0: जी
2: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, 5-10 मिनट उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। यह है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
3: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
1: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
2: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
0: नमस्कार,
4: मैं धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
2: धन्यवाद।
4: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। आप धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
1: घर घर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से

0: करना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
3: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
2: जी रमा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गए, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोग ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था
1: जी।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पर असर होता है, तो जितना आप में

बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे। और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकता है, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए।

है और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है उनके जो रूट ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे। तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें

0: अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे, तो कैसा स्थान है।

0: एक ऐसी जगह है, ये चार पांच बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो तीन शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1, अमृत 2 की योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2, टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का

0: फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरे बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का यूपीआई कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित तो हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया

0: और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी मोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: Whether it's a placebo or a painkiller or a steroid, it's definitely not a medicine. So what if it's not monetary policy and fiscal? It is the trust of entrepreneurs. It is giving the space to entrepreneurs to grow and putting the bad entrepreneurs in jail.
1: As always, enlightening to speak to you, Manish. Thank you so much for speaking to us.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: अभी आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:37:14 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि तदनुसार 16 जून सन 2026 सुबह के समय 5:28:40 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।